प्राण जस ऊतम खट दर्शन गाल है राम शंकर करोड़ तैतीस आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गाव है।

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

सदा सदा हर ध्याय सुखदाता जाता अंत ना पारा वारा रहाव अगन कुंट मह उर्ध लिव लागा हर राख उदर मंझारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत शडावन।

लाहे हो सच सब ऊपर हर तनी सब आए हुकम खसमा हो हुकम सब वर्तनी सच साहेब साचा खेल सब हर तनी।

तिलंग महला चौथा हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइयां आए मिल गुर

केसा का कर बीजना संत चौर टुलावो केसा का कर बीजना संत चौर टुलावो शीश

सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचै रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मनमुख

मन मुख दज मरन जमपुर बधे मारी है वेला ना लहन गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम प्रगासया सहजे सुख रहन गुर का शब्द विसारे।

सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए, प्रभ मेले ता मिल रहे हौ मैं शब्द जलाए। सो शहो सच्चा विसरै त्रिग जीवन संसार, नदर करे ना विसरै गुरमति विचार। सतगुरु मेले

मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वडभा

तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई। सच्चे उपजै सच समावे मर जन्मै दूजा होई। नानक सब किश आपे करता आप करावे सोई। सच्चे भगत सो है दरबार।

आनंदिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गाव हो नारी आनंदिन भगत करहें गुर आ गए सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वसे।

गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभु मेरा स्वामी राम। प्रभु मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई गुरमत सच पाई।

हर हर जप जपिए दिन राती, लागे सहज ध्यान। कल मल दुख जारे प्रभु चितारे, मन की दुर्मत नासी। कहो नानक तब कृपा की जय, हर गुण सुनिए है अविनाशी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावे, चरण चल

आज सुबह निवाज सराए गुजारो साध संग जा को हर रंग लागा तन तन सोजन पुरख सभागा ईत ऊत जन सदा।

पहला गुर वचनी मन सहज ध्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

ज्यों हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे काम। एक ना करम है दे वड्याई एक परम भव है अभिमाना। बिलावल महला तीजा पूरा।

तै मन अभिमान कहत सुनत सबे सुख पावहि मानत पाहे निधान बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

कर ही मह सब कोट निधान, सतगुर दिखाए गया अभिमान, सद ही लागा सहज ध्यान, अन दिन गावै एको नाम। इस जुग मह वड्याई पाई, पूरे गुर ते नाम ते आई, जह देखां तह रहया समाई।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बस हो वडभागनी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जान।

संग समावो सास सास नह विसराय अनकत है ना तावो सफल दर्शन गुर पेटिया मान मोह मिटावो सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो।

समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

रहाउ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन जाका वड प्रताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तहारी, मन बांश फल दित्यन नानक बलिहारी। राग

दृष्ट दृष्टाय अवमान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अवमान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अवमान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चोवै अत निर्मल, जिन पिया तिन ही सुख लहिया, मन हठ कर्म करै।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग इह मनुआ गीद नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

है नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन्ही दीठा राम कली महला पंजवां पंच शब्द।

फलत फलत होहे दोहे सुहेले। अचर्ज पुरख त्याओ रहा, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप, बैरी सब होव हमीत, निर्मल तेरा होवै चीत। सबत उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म,

गया खिन महवेश करहै नटुआ ज्यों मोह पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करहै विकार विथार कन्हेरे सुर

गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हो मैं सुख है त्रिप हवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने मह राखै सतगुर शब्द।

आई। सतसंगत मह नाम निर्मोलक वड्डा भाग पाया जाई। परम ना भूलहो सतगुर सेवहो मन राखहो एक ठाई।

हर भाणा गुर पहाया मेरा हर प्रभ करे शाबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पहावै जिस हर प्रभ भाणा पहावै आनंद अनहद वजह है।

नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास ध्याएणा।

तुझे पछान नहीं, मोहे निर्गुण अनाथ शरणी आया। बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुर नाम दिया कुशल थिया।

कस कसवटी सह सोताओ नदर सराफ वनी चढ़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करतै करणी कर पाई जिनकी

भरपूर। देह देह आख सब कोई जय भावे तै दे, गुरु द्वारे देवसी तिखानवारे सोए, टंडोलत ढूंढत हों फिरी।

चारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन बिद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरु।

इहो भेख निवासी किस वखर के तुम वणजारे क्यों कर साथ लंघावहो पारे। गुरमुख खोजत भए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर।

अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचय परम पद पाइय साचय शब्द समाए लिया।

है बैरागी साच रखिया उर तहरे नानक बिन नावे जोग कदे ना होवे देखो हृदय बिचारे।

पौड़ी। मनमुख मोह गुबार है दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है मथ तत कढोलै, अंतर प्रगास।

पौड़ी। जो तद पहाणा जंत सो तद बुझई, जो तद पहाणा जंत सो दरगाह सिझई। जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई, जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई।

तागी सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संजम रव सस गहने देउ रे। सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पेउ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल

पाठी पियो महारस पारी। काम क्रोध द्वय किए जलेता छूट गई संसारी। प्रगट प्रकाश ज्ञान गुर गम्मत

अनहद बजहै शब्द अनहद बजहै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रहाउ।

जप मन राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

चौथा सब सिद्ध साधक मुन जना मन भावनी हर त्यायो अपरंपर पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हर अलख गुरु।

सुख दुख हीते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुर बिन मुख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है। गुरमत ले हो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पहे सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाई, नानक गुर परम चुकाया। गुरमत

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक कौ जोग

भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मिलाए हर तारे जगत सिबाया।

यो भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द

पुरख मन हाथी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों। गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब

तिस सब किछ सूझै अज्ञानी अंध कमाई हे। मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई।

पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर कै शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन भीने भगत सलाहा है। मेरा प्रभु साचा असुर संहार।

है आन दिन गुण रव है दिन राती, आन दिन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरण सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर

सतगुर बाजहु संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई। सहजे गुण रहै दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उठ है न मूले न आव है न जाही, निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विचार।

गुण निदान मन तन महरव्या, जन्म मरण की जोन ना पव्या, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

पाप खरा शराशरयत ले कम्मा वहो त्रिकृत तर्क खोज टोला वहो मारफत मन मार हो अबदाला मिलो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कुतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द।

गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया रतत किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस।

दरियाओ तृष्णा थकी नानका जामन रत्ता नाई लोयन रत्ते लोयनी कन्नी सुरत समाए जीव रसायन चूनड़ी रत्ती लाल लवाए अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी इस जुग में ना

हर अगम अगाधा निःचल नाम निदान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा सच

दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी त्यास बिडानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन देखत मन लपटानी, देख दमोदर रहा।

हाव कर अनुग्रहो आप राखियो नहि उपज पाओ बेकार जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नै संसार।

बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरै। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करै। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ

बाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा मह मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ

दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने शब्दे मेल मिलाया रहाउ। आन दिन भगत करह दिन राती दुविधा शब्दे खोई सदा निर्मल है जो सच राते सच बसिया मन।

नानक हरण अक्ष नहीं बिदारिया, अंध है दर की खबर ना पाई। नानक हरण अक्ष नहीं बिदारिया, अंध है दर की खबर ना पाई। राग पहरों महला चौथा, चौपदे घर पहला।

तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसिया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साध

रहाओ। गुरसिख हर बोलहो हर गावो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर के रा, सो जन पावे हर सुख घणे।

रहाओ। काल युग में है एक नाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार। पैरों महला पंजवा सतगुरु सेव।

ठाकुर छोड़ दासी कौ सिमरहै मनमुख अंध अज्ञाना हर की भगत करहै तिन निंदा है निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर भवजल फे।

निज घर वासी हम सुख पाया ता सब है सुहेले गुर पूरै पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते ऊचे देश मेरे बेअंत अपूछे राज हमारा सद ही निहचल माल हमारा अखूट अबेचल शोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमारी।

मस्तक भाग जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपालय सतगुर मेरा मार जीवालय।

हम मूड मुगद किस बूझ है नाही, तू आपे देह बुझाई, जो तुद पहावे सोई करसी, अवर ना करना जाई।

सो बड़ पहागी जिस गोर मस्त कहात रहाओ। जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना, जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना त्रिग जीवन मुआ। जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता, जिस नाम हृदय

हर नाथ से जिन नखे बिदारियो सुर नर किए सनाथा कहे नाम देओ हम नर हर त्याव हैं।